धन गुरु तेग बहादुर सोच लै भाई धार लै अपने मन विच इसनो धार लै मतलब वसा लै मन विच सिर्फ चार दिनां दी गल है बंदा नाल तकबर भरिया कूड़े करदा माने मैं हां चतर सियाणा सुंदर शेर आप नू जाने आकड़ आकड़ चले किसे दे नख तले नहीं आने साई लोका जद फूका निकले आवे होश ठकाने ए बंदा जिन्ना मर्जी मान कर लवे पर उदो तक है जदो सब कुछ ठीक है जदो थोड़ी भी चीज गलत हो जावे कहता जी मैं बड़ा तकड़ा हां बलवान हां पर एक दिन मंजे ते पै जे निढाल हो जाता है। धन गुरु तेग बहादुर मसालो अपने मन में राग सिंध

सच्चे पातशाह, प्यारे गुरुदेव, सतगुरु साहेब श्री गुरु रामदास जी महाराज, इस शब्द दे विच ये दसते हैं कि आप जी की आत्मक अवस्था इस तरह की है कि हों जीवा नाम ते आए। जदों तक मेरे ध्यान दे विच वाहिगुरु तेरा नाम, तेरी याद रहिंदी है, उदों तक मैं अपने आप नूं अलाइव महसूस करदा हां, जिंदा महसूस करदा हां। अते आखदे हन बिन नावै जीवन ना थीए, नाम तो बिना कहिंदे, तेरी याद तो बिना जीवन ना थीए, जीविया नहीं जांदा, जी नहीं हुंदा। मेरे सतगुरु नाम दिरड़ाए, ऐ मेरे गुरुदेव, मेरे सतगुरु, मैनू नाम इतना दृढ़ कर दे, नाम मेरे अंदर इतना वसा दे कि नाम तो अलावा मेरे ध्यान च कुछ होर ना आवे।

तू मेरो प्यारो तो कैसी भूखा है, भाव मेरिया सारिया भूखा तेरे प्यार नाल ही दूरिया दूर होंदिया। सो नाम वाला जो है उसके नाल महाराज जी का प्यार है। इसे करके कहते हैं मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए, ए मेरे प्रीतम। प्रीतम बहुत प्यार दे नाल आख्या होया एक्सप्रेशन है, ए मेरे प्रीतम तेरा नाम जदों तक मेरे ध्यान च है मैं अपने आप नूं जिंदा महसूस करना, ते तो विछड़ना मेरे वास्ते मरण समान। तू मेरो प्यारो तक कैसी भूखा, और आखते हैं अमृत प्रियता नाम प्रिया प्यारा। कहते हैं मेरे प्यारे का जरा नाम है ना वो अमृत है, वो मृत्यु तो रहत है, इतना महान है। सो इत्थे एक प्यारा आंदा है, इत्थे एक हस्ती आंदी है, इत्थे एक ऐसी शख्सियत आंदी है जिसके नाल महाराज जी का प्यार है, अते उस प्यार करके महाराज जी नूं उसका नाम प्यारा लगता है। सात संगत जी, मैं आप जी के सामने थोड़े जहे प्रमाण रखन लगा हां जिन्हां च बार बार बार बार लफज आएगा नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार। ध्यान नाल सुन, एक ही लफज आएगा बार बार हरेक लाइन च नाम प्यार। कहते हैं

गुरु महाराज जी के पास वो नाम वाला है, उस नाम वाले के नाल महाराज जी का प्यार है, उस दे नाल मोहब्बत है। इस करके गुरु महाराज जी नू उसका नाम प्यारा लगता है। सो इथों दो नुक्ते सिद्ध होंदे हन। नंबर एक कि गुरु महाराज जी का अगर उस नाम वाले दे नाल प्यार है तो गुरु महाराज जी ही सानू उस नाम वाले तक ले जा सकते हैं। गुरु महाराज जी ही उस नाम वाले नाल साडा प्यार पवा सकते हैं, क्योंकि प्यार किसे ना किसे एक्सपीरियंस के बेस उते हुंदा है। उस नाम वाले दे नाल सानू मिलाणगे, उस नाल मिलन दे नाल जो सानू एक्सपीरियंस होएगा वो इतना वंडरफुल होएगा, इतना मैजिकल होएगा, इतना मिरेकुलस होएगा कि इंस्टेंटली वी विल फॉल इन लव विद दैट। पर जब तक असी उसमें मिलांगे ही नहीं, उस नाल प्यार किवें हो सकेगा? तो प्यार पाउण दे वास्ते कोई विचोला चाहिदा है जिहड़ा उसनू जानदा होवे, उस तक पहुंच रखदा होवे अते दूसरां नू उस तक लजा सकदा होवे। उही प्यार पवा सकदा है ना। हुण असी महाराज जी तो आओ गुरबाणी चों पुछीए, सच्चे पातशाह साड़ी समस्या यह है कि साडे पास प्यार नहीं है। आप जी का तो प्यार है पर साडे पास प्यार नहीं है, तो फिर साडा प्यार किस तरह करे? सवाल मेन इशू यह है, महाराज जी आप जी के घर रब ही रब है और उसका नाम ही नाम है। आप जी नू वो भी प्यारा है, उसका नाम भी प्यारा है, पर साडे ते तरस करो ना, तो असी उसनू जानते हैं ना, साडा उसके नाल प्यार है। क्योंकि जे प्यार होवे तो फिर यह किस तरह हो सकता है कि साडा उसका नाम जपन च मन ना लगे? ये किवें हो सकता है? जे प्यार होवे तो उहदे नाल मन ना लगे? जदों प्यार हो जाता है उदों टाइम एंड स्पेस दोनों भुल जाते हैं। सानू नाम जपन लग्या नू कदे लत थक जाएगी, कदे कमर दुखेगी, कदे कुछ होएगा, कदे इचिंग होएगी, और असी टाइम देखते दे रहांगे। एक घंटा सानू नाम जपन लिए आख्या जाए तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम है। 3 घंटे की असी पिक्चर आराम नाल देख सकते हैं। सो साडा प्यार नहीं, लेट अस एडमिट दिस। गुरु महाराज जी का प्यार है उस नाम वाले दे नाल, ते जिस दे नाल प्यार होवे उहदा नाम भी प्यारा लगता है और उस दीयां सारियां ही चीजां प्यारियां लगदियां। मेरा नाम ही नहीं, जिसके नाल प्यार होवे उसकी हर वस्तु प्यारी लगती है। इस करके महाराज जी ने आख्या है, तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहन न जाई तेरे गुण केते। उस दे नाल प्यार है करके कहते हैं तेरे अनेका तेरे च गुण हैं, क्योंकि जिदे नाल प्यार होवे उच ही गुण नजर आया करते हैं। जिदे नाल प्यार ना होवे उच भावे गुण भी होण तां भी अवगुण दिसिया करते हैं। महाराज जी कहते हैं तेरे अत्यंत गुण हैं, अते उस दी हर चीज तो महाराज कहते बलिहारी कुदरत वसिया, कहते तेरी कुदरत तो भी मैं बलिहार हूं, तेरी कुदरत तो मैं बलिहार हूं। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि फाउंडेशन जो है वो प्यार दी है। महाराज जी का उस नामी दे नाल प्यार है, उस दे नाम नाल प्यार है, उस दी रचना दे नाल प्यार है। इत्थों तक के असी तो अपने आप से कई दफा तर्स करते हैं कि सानू लाइफ क्यों मिल गई है, वट टू डू विद इट वी डोंट नो। Sometimes we even go to the extreme of taking our own life. पर महाराज जी आख देन वाह असम तू वाह जिन रच रचना हम किए। उस दे नाल प्यार होण करके महाराज जी अडोर करते हैं कि तू कमाल है, किस तरह का तू सानू बनाया है। कहते हैं वाह असम तू वाह जिन रच रचना हम किए, जिसने रचना रच के सानू बनाया है।
कितनी खूबसूरत रचना है। अते महाराज जी नूं वाहिगुरु नाल प्यार होण करके उसकी हर चीज इतनी प्यारी लगती है कि गुरु महाराज जी इस संसार नूं कहिंदे हन ये अमृत की वाड़ी है, ये अमृत का एक बगीचा है। पर सानू थोड़ा लगता है अमृत का बगीचा, साडे लिए उन्होंने कुछ होर आख्या। हुण साध सिंह जी कीर्तन का अज दे कीर्तन का जो आखिर नुक्ता आप जी की सेवा च मैं रखना चाहना हाँ, वो एक समस्या है, एक इशू है कि महाराज जी का तो प्यार है, महाराज जी उसनू जानते हैं वह कित्थे है, महाराज जी नू उसकी हर वस्तु के नाल प्यार है, महाराज जी उसके प्यार च इतने भिजे पे हैं, कहते हैं आखा जीवा विसरे मर जाओ, कहते हैं तू मेरे लालन तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण है, तू मेरे लालन तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब तू मेरे खान, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संगीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमख ना जाई रहना, ए प्यार है, ए प्यार है। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई ता भाव के हा काला जी, ए प्यार है। मेरा मन एक ही प्रेमांग है, मेरा मन अपने उस एक प्यारे नु ही चाहता है, और कुछ चाहता ही नहीं है, ये है प्यार। उहा प्रेम प्री केंदन ओ प्री जो प्यारा है महबूब है, केंदे बस ओ उसका मेनू प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इतना प्यार। एक सिनेरियो है कि परमात्मा कहता है कि आप जी प्यार दी जगह कुछ होर ले लो, प्यार ही क्यों मंगते हो, कुछ होर ले लो, होर बहुत कुछ दे सकते हैं, की दे सकते हो, हीरे लाल जोहरात मान मोती बहुत कुछ दे सकते हैं, ए ले लो। महाराज जी आखते हैं हुण सुन वाला शब्द है, कहिंदे अत्यंत चीजा खिलारियां पईयां हन सामने, ते अकाल पुरख पुछता है तुहानू की चीज चाहिदा है, ते विचकार ही एक थां ते उन्होंने प्यार रखिया है, ते महाराज जी आखदे हन उस वल उंगली करके ओ उहा प्रेम प्री, कहिंदे ओ प्री दा प्रेम ही चाहिदा है, कनक माणक गज मोतियन लालन, कनक यानी सोना, माणक कनक माणक स्टोन्स बहुत कीमती कीमती स्टोन्स, कनक माणक गज हाथी, कनक माणक गज लालन डायमंड्स, कनक माणक गज लालन नह नह नहीं, कहते नहीं, तीन बारी आख्या है, कहते इन्हों चो मैनु कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, कनक माणक गज मोतियन लालन, ना मेनू हीरे ना मेनू पर्ल्स ना मेनू स्टोन्स ना मेनू डायमंड्स, कुछ नहीं चाहिए, की चाहिए है उहा प्रेम प्री, सिर्फ तेरा प्रेम चाहिए, कनक माणक गज मोतियन लालन नह नह नहीं, राज ना भाग राज ना भागन ना हुक्म ना साधन, किछ किछ ना चाहिए, कहते इन्हों चो मेनू कुछ नहीं चाहिए, तो यह है प्रेम। सो महाराज जी दे कोल है प्रेम, साडे कोल है कुछ भी नहीं, असी खाली हैं, साडे कोल की है अंदर खाली प्रेम बेन, दैट्स व्हाट वी है। महाराज जी ने बाणी चाखे अंदर खाली प्रेम बेन आओ सारे आखिए, ये साडी अवस्था है, ये साडी कंडीशन है, ये साडी हालत है, साडे कोल पहरावा हो सकता है सुंदर, साडे कोल रस्मो रिवाज सारे हो सकते हैं, साडे कोल आलीशान गुरुद्वारे हो सकते हैं, लेकिन साडे कोल जे है नहीं तो की नहीं, अंदर खाली प्रेम बिन, सारे बोलो इस पंक्ति नूं, अंदर खाली प्रेम बिन, साडे अंदर प्रेम तो बिना खाली है। अते महाराज जी आखदे हन जिथे अंदर प्रेम नहीं है, कहिंदे ओ इंसान ऐस जगत विच जिहा आया जिहा ना आया ओ एक बराबर है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने भी आख्या है, साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो
ਭਗਤੀ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਸੁੰਨੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਲਵਿੰਗਨੈਸ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੋ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਵਨ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ,

संतां संगत मिल रहे, क्योंकि संत प्रेम ही प्रेम हुंदे हन, प्रेम रूप हुंदे हन। संत स्वाय प्रेम तो अलावा और कुछ नहीं। ताई तो महाराज जी ने आख्या है, ना कोई बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कहते मेरी सारे नाल ही बनती है, साधी ध्यान नाल अपनी जिंदगी देखो, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, साड़ी बनती किस दे नाल है। पर गुरु बाबा जी आखते हैं सगल संग हमको बनाई, कहते मेरी सारिया के नाल ही बना दी है, मैं सारे नाल ही प्यार है। कहते प्रेम किवें लग सकता है, इसनु सुनो और नोट कर लो बाद दे विच। कहते हैं संतां संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार। इस तो भी होर स्पष्ट सिंपल करके आख्या, कहते हैं संत सहा

मैं उन्हां दे चरनी लगदा हां, मैं उन्हां दे पैरी लगदा हां। कहिंदे संत सहाई प्रेम के, संत ही हन जो हेल्पफुल हन, जो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो आप प्रेम दे नाल भरे हुए हन, अते ओ क्योंकि प्रेम दे नाल भरे हुए साडे अंदर ओ प्रेम जगा सकते हैं। इस करके कहिंदे मैं संतां दे चरनी लगदा हां, पर साडी ईगो तो सानू झुकनी ही नहीं दिंदी, असी तो किसी के चरनी लग ही नहीं सकते। पर बाणी ते आखदी है साडे अजिहे कॉन्सेप्ट बन गए हैं कि असा गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो अलावा किसी ने मत्था नहीं टेकना, और उस दे नाल असी इतने हंकारी हो गए हैं कि कोई भी शख्सियत आ जाए, कोई गुणवान आ जाए, पर असी झुक नहीं सकते क्योंकि साडी ईगो ऐसी, और जब तक असी चुकांगे नहीं असी समझ लो पत्थर हैं, और पत्थर च भी कदे प्रेम पैदा हो सकता है। महाराज जी आखते हैं संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागों पाए, जे पैरी लगना चरनी लगना गुरमत दे विच उल्ट हुंदा ते आपंक्ति क्यों लिखी हुंदी है। वो कहिंदे हों तिनके लागों पाए, वो इतने महान हन कि वो प्रेम का ही सागर बने पए हन, उन्हां दे मैं चरना दे उते लगदा हां, चरनी लगदा हां, पैरां उते मत्था टेकदा। संत सहाई प्रेम के हां तिनके लागों पाए, सिर्फ ओही हन जो साडे जीवन दे विच प्रेम पैदा कर सकदे हन। उसकी अगे चल के विचार कीती जाएगी अगले कीर्तन च कि ओ किवें करदे हन। प्रेम किवें प्राप्त किया जाए, हुण इस उत्ते प्रमाण चल रहे हैं। अगला प्रमाण कहिंदे हन मन रे राम जपो सुख होए, कहिंदे हन मन रे राम जपो, पर महाराज जी राम नाल ते साडा प्यार ही नहीं है, उसनू जपिए किवें? जब प्यार ही नहीं है उसनू जपिए किवें? पहली अद्धी पंक्ति च आख्या है मन रे राम जपो सुख होए, उसनू जप के सुख होएगा, पर जब उसके नाल प्यार ही नहीं है तो उसनू जप किदां लईए? ए मनुआ दह दिस्तां दा, ओ कैसे हर गुण गावे? ए मन ते दस दिशा दे विच दौड़ा फिरदा है, किवें उहदे प्रेम नाल गुण गावे? प्रेम ही नहीं है। पर अगली लाइन दे अद्धे हिस्से दे विच फिर जवाब दे जांदे हन कि प्रेम किवें मिल सकदा है। कहिंदे हन मन रे राम जपो सुख होए, परंतु अगला हिस्सा पंक्ति दा कहिंदे हन

राग गौड़ी भी सोरठ भी विच दोवें ऋषभ दोवें मध्यम दोवें निषाद अते दोवें धैवत सुर लगते हैं। इस दे अवरोह विच गंधार सुर वर्जित है। इस दी जाति संपूर्ण षाड़व वादी पंचम संवादी षड़ज अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच अब मोको भय राजा राम सहाई शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

निर्धन को पल ले, निर्धन को पल ले, पांच तरह का निर्धन पालना। पहला निर्धन पालना गुरु का सिख दसवंध कढ़े, सारे चाथी पायो, अगां अगां ज्यों प्रकरण आएगा कोई माया का दसवंध नहीं कढ़ सकता। ए नहीं कि वह नहीं निर्धन पाल सकता, वह भी पाल सकता। ए अगे प्रकरण आणगे जेड़े बंदगी वाले महापुरश सारी जिंदगी जिन्होंने लेखे लाई होवे गुरु दे, वह भी निर्धन नूं किहड़े ढंग नाल पालदे ने, उन्हां दा पालना किन्ना क उच्चा है, असीं कितें पहुंच भी नहीं सकदे। उसे वो अगां प्रकरण आउणगे। अज दा प्रकरण पहला निर्धन नूं पालना गुरु का सिख दसवंध कढ़े। सारे झाती पायो, इहदे विच कमजोरी ते नहीं। और दसवंध कढ़न तों बाद बड़ा सोच के लावे लाउणा किथे, किसे गुरुद्वारे दी कार सेवा लई देंदा है, वो भी गुरु नूं पहुंचदा है। लंगर लई देंदा है, वो भी गुरु नूं पहुंचदा है। अजकल तुहाडे चों कई बीबियां ककारां लई सेवा देंदियां, ककारां लई, ये भी गुरु नूं पहुंचदा।

के भगत मेरे नाल जुड़े है, अपना काम भूल गए है। जे राजे की मालिश कर ए ना गया, राजा इनू सजा देवे।

मतलब की बातें हैं, ये सब मतलब के झगड़े हैं। ब्राह्मण को गरूरे कौम ने इतना डुबोया है कि मैं वड्डा वा, उसकी जनीयत पे उसका मुकद्दर रोया है। हुकूमत के तशद्दुद का जमाना खत्म करना है, हकीकत कह रही है ये अफसाना खत्म करना है। उठो शहादत लिख के लिए।

फिर हिम्मत आई, फिर डिसिप्लिन आया, फिर साहबी आई, अमृत दी दात बख्शी गरीब नवाज पातशाह ने, ते फिर भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, गुरु कृपा ने जातां दा मौका दित्तियां। ध्यान दिओ जे, ध्यान दिओ जे, एक जट लिया, एक खत्री लिया, एक चीवर लिया, एक चींबा लिया, एक नाई लिया, ते सारयां नूं इक्को बाटे विच पलाया।

फुल ते फल दा जीवन जो बीज तो आरंभ होया वो की है अपने आप नूं धरती विच समा देना।

फिर मेरे सतगुरु ने वचन कर दिते, उपदेश दिता, साध संगत विच नाम जपे, गुरु मिल पे, उन्होंने वचन कीते, उन्होंने वचना करके मैनु पता

भाई सात संगत विच जन्म होवे फिर सात संगत विच खुराक केड़ी मिलती होगी। जिसने जन्म लिया उसनु आहार भी चाहिए। आ माता कुखों जन्म देंदी है मनुख नु उसके आहार का भी इंतजाम है। जिवें जिवें वड्डा हुंदा उसकी खुराक मिलती है। ते जदों सात संगत की कुखों गुरमुख जन्म लेंदा है ते उसनु खुराक केड़ी दिती जांदी है? ते सतनाम श्री वाहिगुरु उसनु खुराक केड़ी दिती जांदी है? सतगुरु जी खुराक

जे सच्चे दे दरबार विच जाना होवे फिर सच वस्तु ही ना लेके जानी चाहिए, कूड़ नहीं लेके जाना चाहिए। ये सच है, कूड़ तो अंदर जाएगा भी नहीं, बाहर ही रोक लेंगे। ते कूड़ किसनु कहंदे? जिस वस्तु नाल नेह करिए करतार विसर जाए वो कूड़े, जिस वस्तु नाल नेह करिए परमात्मा चेते आ जावे वो सच्चे। ते वो सतनाम श्री वाई हुण असीं फैसला करिए, जिहड़ा असीं भोजन छकदे हां जे तां इस भोजन छकण दे नाल परमात्मा चेते आउंदा ते सच्चे, जे भोजन छकण दे नाल परमात्मा ही भुल जांदा ते आलस आके सौ जांदे आ ते फिर वी कूड़े, ते वो सतनाम श्री वाई। जे असीं भोजन दे नशे विच इतना खाई जांदे आ कि परमात्मा ही विसर गया, सानू अपना खाना चेते, सानू हसना चेते, सानू पीना चेते, सानू सोना चेते और सानू मरना भुल गया, जब सतनाम श्री वाहिगुरु ते सानू साहिब भुल गया, खाना पीना हसना सोना विसर गया है मरना, कसम विसार खुआरी कीनी त्रिक जीवन नहीं रहना। ते फिर कहंदे ने की वस्तु लेके जाइए सच

इस तरह बयान करते हैं, अमले अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता।

हाँ तिन बलहारी जा। पहली गल साहिब एक सफल रुख है पर इदा नाम है अमृत जिन पिया ते त्रिपत पाए ए नाम रूपी अमृत जिन्हें पीता ओ त्रिपत हो गया क्योंकि नाम विच सारे सुख हैं दुनिया दे पदार्थां विच सुख ने एक चीज ले लो दूसरी दी इच्छा पैदा हो जाती आज इतनी माया है गुजारा हो रहा है पर इच्छा है इस तो ज्यादा चाहिए एक चीज घर विच है पर मन दी इच्छा होर वध गई होर चीज चाहिए दुनिया दे पदार्थां दे नाल इंसान कदी रजदा नहीं पर साहब जी कह रहे ने जिन्हां ने अमृत रूपी नाम पी लिया नाम जप लिया उन्हां दे मन दी तृष्णा खत्म हो जाती है ते जिन्हां ने अमृत रूपी नाम पीता साहब जी कहंदे ने हौं तिन बलिहारे जाओ मैं उन्हां तों बलिहार जाना।

जा सिफत करी अरदास। कई लोग कहते जदों भी पाठ करन बैठिए, भजन करन वास्ते बैठिए, मन नहीं टिकदा। मन किस तरह टिके? जद मन विच विकार नहीं, मन दी पटकना ताई खत्म हो सकती है। मन दे परम ताई दूर हो सकते ने जे असी दिलों अरदास करी और सच्चे मनो परमेश्वर दी सिफत सलाह करिए। कई कहंदे ने साडी अरदास पूरी नहीं हुई, सुखना सुखी सी पूरी नहीं हुई। जद अरदास करो, दिल दी गहराई विचों अरदास करो और सच्चे मन दे नाल परमेश्वर दी सिफत करो, अरदास भी सुनी जाएगी। मन दा धोखा परम वहम भी दूर होणगे और परमेश्वर दी खुशी भी प्राप्त।

मेरे नानक की वड्डी भैन नानकी आ रही है। नानकी नहीं पहला पहचाने आसी, नानकी नहीं सानू के आसी कि ए अर्शां तू आया है। इसनु पुत्र ना समझो, ए आप आया है। तृप्ता ओ देख नानकी आ रही है, ते मैनु जापदा है जे नानक दी प्यारी भैन आ रही है ते नानक भी जरूर आवेगा। मेहता कालू जी उठ के खड़े हो गए, बेबे नानकी और नाल उन्ना दे पति जयराम जी वो भी आ रहे ने। बेबे नानकी वेड़े विच दाखल होए और भज के अपने पिता मेहता कालू से गल लगे। अखां विच अश्रू पै वगदे ने ते कहन लगे, पिता जी मेरा वीर नहीं आया। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए असां तां इह सोचिया कि जे तू आई है ते नानक भी जरूर आवेगा। इतने नूं भाई अजय राम जी भी अंदर आए। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए जा अपनी मां नूं मिल, उन्नू भी दिलासा दे जिहदियां अखां विचों ते हुण अथरू भी सुकदे।

कहने लगे बेटा हर साल तेरे जन्मदिन पे चोला सी के रख दी है। सैब जी कहने लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई। संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए। ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लें मैं फिर मिलांगी।

दुनिया विच जा रहे हैं, बंदगी कर, सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना, सचखंड बना। ये कथा कहानियां सुननिया अपने महापुरुषों के जीवन वाल देखना है। वो पति भी ने, पुत्र भी ने, वो भरा भी ने, वो सज्जन मित्र भी ने, वो गुरु भी ने, वो पीर भी ने, उन्होंने दुनिया नू प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के असि भी अपने मना विच प्यार रखिए, साडे मन विच प्यार होवेगा, अपने घरदियां नू प्यार देंगे, लोकां नू प्यार देंगे, ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं, ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

के नाम तो बिना छुटकारा नहीं, नाम तो बिना कोई बाण नहीं फड़न वाला, नाम तो बिना कोई वस्तु नाद नहीं जान वाली। इसलिए हे कलगियां वाले पातशाह, हे दुष्ट दमन दाता, हे महान तपस्वी, हे हेमकुंड दे निवासी सतगुरु, सानू जोड़ लै नाम दे नाल, सास ग्रास तेरा सिमरन करके, श्वास सफले करके, मुख उजला करके तेरे चरणा विच जाई। जो गुरु के लाल श्री हेमकुंड साहब श्रद्धा और भावना दे नाल नाम जपदिया सेवा सिमरन परपकार करदिया जांदे हन, इस रस दा इस स्वाद दा उन्हां नूं ही पता है। निरंकार आप ही अपनी शक्ति बख्श के ऐसे कठिन रस्ते तो आप सहायता करके ले जांदा, औखी घाटी बिखड़ा पेंडा मेरे अंग संग होए सहायक, जो सिमरन करदिया उथे पहुंचते हैं भाई, उन्हां दे चेहरियां दे रंग भी तब्दील होंदे हन। कोई नाम दा नूर चढ़िया हुंदा, नाम दी लाली हुंदी है उन्हां दे मस्त। ते फिर जी करदा है कि होर जपां,

तान गुरु नानक पातशाह इस शब्द विच अकाल पुरख वाहेगुरु दे चरणा विच अरदास कर रहे हन। हे निरंकार आप सरबग हो असी अलपग जीव हां, आप निरंकार हो असी भुलनहार हां, असी कूड़यार हां। जो भी बचन करदे हां उस नाल कूड़ दी लब लगी होंदी है। आप दा नाम सदा सच है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। असी गुनाहगार हार हार भुलनहार हां, इसलिए संसार ते आके जो कुछ करना सी ओ कुछ कीता नहीं। तेरे दर ते ता जपन वालियां दी इज्जत है सत्कार है, पर असी तो केवल तेरी बख्शिश लोड़दे हां। कोई